नाम ले जा रो तने ने दिखा ने से प्याये चौसिया मी तया यो सूरा तुगरी शिवा थे।

नाम ले जा रो तने ने दिखा नहीं से प्याये चौसी आमी यायो सूरा तुबरी मशीवा ठेया लवी तो या प्राणी पिखा तने हो ना लाली जो मा जावी जैसे मुमा अस्वां कोने बाबी हेलो वे जीवी में मतिया मुबू